इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत् मत व्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिक दृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावडी आसने एआईएनआरसी दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचण्डं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधात् च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रेऽस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः त्रिषष्ट्युत्तरैकशत नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केन्द्रीय सचिवालयं समेत्य पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियन्त्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जन सहभागिता भावना वर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवंत केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् संबोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन एसआईआर इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां ईवीएम प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक अपत्तीनां रोधनाय निर्वाचन आयोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचन आयोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन दश प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं पञ्च आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय टी20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं षड् कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला एकम् एकम् इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इंदौरनगरे भविष्यति। इति वार्ताः।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं बस समझ जाओ।

0: वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्या प्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्र शासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नं अपृथक्करणीयं अंगमस्ति, सदैव स्थास्यति च। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः चतुर्थ समितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः। तत्र संसद सदस्या महिमा कुमारी मेवाड़ महोदया पाकिस्तान प्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती। न्यूयॉर्क स्थितेन संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिक पटले सूचितं यत् संसद सदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़ महोदयया जम्मू कश्मीर सम्बद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्त राष्ट्र मञ्चस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्र निन्दा कृता। आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्र हृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः। भारत ऋतु विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेशेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। इति वार्ताः।

0: सैंपल दिखा दो। पसंद आ गया? कंसाइनमेंट भेज दो।
1: ठीक है,
0: टेक केयर।
1: ओके।
0: रूम नंबर 224 के गेस्ट मेरे हैं, उनका जो भी बिल बनता है मेरे अकाउंट में डाल दो।

आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। दोबारा ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी